उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे।

उनमें नीची निगाह वाली औरतें हैं जिनको अहले जन्नत से पहले न किसी इंसान ने हाथ लगाया और न किसी जिन ने। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

0: नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ नहीं है, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।
1: ऐ अल्लाह, ऐ हमारे रब, ऐ कौनो मकान के मालिक, हम तेरी बारगाह रहमत में दुआ के लिए हाथ उठाए हुए हैं, हम पर करम फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे बुजुर्गों ने तेरे नाम और तेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवाओं के लिए, बर्रे सगीर में सरजमीन के लिए बाबाए कौम कायद आजम की क्यादत में बेहिसाब कुर्बानियां दी हैं। हमारी इस सरजमीन पाक को कयामत तक आबाद रखना। ए अल्लाह, हमें नफरतों की आग से बचा ले, हमें बाहमी मोहब्बत और खुलूस की दौलत अता फरमा, हमारी गलतियों को माफ फरमा। हम अपने गुनाहों से तौबा मांगते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। ए अल्लाह, पूरा मुल्क खास तौर पर ये मासूम बच्चे तेरी बारगाह रहमत में दुआ के लिए हाथ उठाए हुए हैं। ए अल्लाह, इन मासूम बच्चों की दुआओं के तुफैल इस सरजमीन पाक को आने वाली नस्लों के लिए महफूज और मुबारक कर दे। ए अल्लाह, इन मासूम बच्चों की दुआओं के तुफैल हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बना दे। ए अल्लाह, दुश्मनों के शर से हमें महफूज रख। हमारा ये परचम, हमारा ये प्यारा परचम इज्जत और कामरानी के साथ रहती दुनिया तक सरबलंद रखियो। ए अल्लाह, अपने रहम और करम से और अपने फजल से इस सरजमीन पाक को मादनियात और कुदरती वसाइल से मालामाल फरमा दे। ए अल्लाह, ए हमारे परवरदिगार, पाकिस्तान के हर शहरी का दिल तासुब, गिरोहबंदी और फिरका परस्ती के घिनौने ख्यालात से पाक हो और वो हर फिरके और हर तबके के भाइयों के साथ मोहब्बत व आश्ती और अमन सुकून के साथ रहे। ए अल्लाह, हम सबको हलाल की रोजी हासिल करने की तौफीक अता। आमीन।
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: अच्छा, मतलब हिजाब के लिए आप देखें कि अब शादी के मौके पर कई लोग अगर सारी सिचुएशन में अपने आप को छुपाने या बचाने की कोशिश करते, सब हाथ धो के पीछे पड़ जाते कि तुम्हें क्या हो गया, तुम क्या बन गई। और बाजू का सिर्फ जबान से नहीं, मेरी एक स्टूडेंट थी, उनके रिश्तेदार काफी इंटेलेक्चुअल से पढ़े लिखे, तो पढ़ती नहीं कुरान पढ़ा, काफी प्रैक्टिकली चेंज हुई। अभी लाहौर एक शादी में गई अपने रिश्तेदारों के पास, कहती है कि जीना दूभर मेरा कर दिया गया कि सिर्फ जबान से नहीं, जो आता वो मेरा कपड़ा खींचता। कहते कम से कम हमारे सामने इस तरह नजर ना हो, हम नहीं देख सकते। अब इंसान सोचता, अच्छा ये इतने सारे हैं और मेरे से फिजिकली जंग कर रहे हैं, अब चलो छोड़ो, क्या अब इनको नाराज करना, जो कहते हैं वही कर लेती हूँ। कोई भी ऐसी सिचुएशन कि जिसमें आप कुरान पढ़ते हैं तो कुछ और ही रास्ता नजर आता है, लोगों को देखते हैं वो कुछ और ही कर रहे हैं, फिर आप कंफ्यूज होते हैं कि मुझे क्या करना है, उसका जवाब है। और पीछे भी ये जवाब गुजर चुका, अफहुक्मल जाहिलियत यबून, और यहां भी अफगैरल्लाह अब्तगी हकमन, अल्लाह के सिवा गैर को, दूसरों को अपना मुनसिफ बनाऊ, उनसे पूछूं कि क्या करूं और क्या ना करूं। वहुवल्लज़ी अंज़ला इलैकुमुल किताबा मुफस्सला, हालांकि किताब तफसीलन आ चुकी, उसमें सब अहकाम मौजूद हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब पता है, फिर भी हम किताब को तो पीठ पीछे फेंक के लोगों के दीन को अपना लेते हैं। वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, और वो लोग जिनको हमने किताब दी, यालमूना, वो जानते हैं, क्या जानते हैं, अन्नहु मुनज़्ज़लुम मिन रब्बिका, कि वो नाजिल करदा है तेरे रब की तरफ से, बिल हक के, हक के साथ, फला तकूनन मिनल मुमतरीन, आप हरगिज शक करने वालों में शामिल ना हो, किसी कंफ्यूजन का शिकार ना हो, हक हक है, वाजे है, कोई कंप्रोमाइज नहीं। क्योंकि जब मेजॉरिटी लोगों की एक बात कहने लगती है तो इंसान लाजमन शक में पड़ता है, लगता है कि मैं कुछ गलत ही कर रहा हूं, वरना इतने सारे लोग मेरी मुखालफत ना करते, और फलां तो इतना अकलमंद है वो भी यही कह रहा था। हम लोगों की निगाहों में अपने आप को परखते हैं ना, जांचते हैं, अच्छा वो मेरे बारे में क्या कहता है, वो क्या सोचता है, ये मुझे कितना चाहता है, इसकी नजर में मैं क्या लगती हूं, ये मुझे पसंद करता है कि नहीं करता। नहीं, इनमें से कोई भी मैयार नहीं, पर मैं हक तेरे रब की तरफ से आया है, तुम शक ना करना, लोगों को मैयार ना बनाना, इस किताब को मैयार बनाना। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام علیکم ورحمت اللہ
1: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمون ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुन जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-8151
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियर दस्तियाब आहिनि
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 ऐं 0242-460100
4: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे
5: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का
4: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
5: बैंक अलहबीब रिश्ता भरोसे
1: के बाय शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें हल्के कपड़े पहने सर ढांप कर रखें धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें ये अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध PTMA कमिश्नर कराची के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ताबुन से पेश किया जा रहा है
6: अस्सलाम वालेकुम अदा
7: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा
8: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
6: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
7: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
8: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
7: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
9: 0301-399-2836
10: ਹੋਪੁਰ ਕੀ ਫੋਰ

0: से आ वाके गुल्ला आओ बा
1: हर अदा तू जी मस्तानी तो कहिया दिल दीवानी
2: रुलाए छजी राजन के।

अमेरिका जा दखण ईरान में हवाई हमला सेंटकॉम जो चवण आए तो अमरीकी फौज दखण ईरान में ड्रोन लॉन्चिंग हंधन के निशानो पढ़ाया बारूदी सुरंगू विछायण बारे ईरानी बेड़न के भी निशानो पढ़ाया पो उन अग बंदरी अब्बास में धमाकन जा आवाज बुदा वया हुआ ईरानी मीडिया जो चवण आए तो बंदर अब्बास में सूरत हाल कंट्रोल में आए। अमरीकी सदर ट्रंप एक भेरों बीहर ईरान के धमकी दींदे आए तो यूरेनियम अमरीका हवाले करनी पवंदी या बे कें काबिले कबूल जाए तो मुंतकिल करे तबाह करनी पवंदी बो को रस्तो ना। यूरेनियम ईरान में ही रहंदी अपने हुर्मुज के गालिन जो हिस्सो न बढ़ाईंदासी ईरान वाजे करे छो पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी आए तो अमरीकी नाकाबंदी खत्म थी तो आपने हुर्मुज का गुजरन जो अमल असाजे तय कल इंतजाम तहत थन्द ईरानी आपने हुर्मुज से ईरान के खुदमुख्तियारी अमन मुहिदे तई पहुंचन अहम असाजे अजीम कुर्बानी की बुनियादी सुतून में एक अहम जाग्राफियाई अहमियत है। आपने हुर्मुज के कदें भी गालिन जो हिस्सो न बढ़ाईंदासी।

अमेरिका जा दखन ईरान में हवाई हमला सेंटकॉम जो चवण आए तो अमरीकी फौज दखन ईरान में ड्रोन लॉन्चिंग हंधन के निशानो बणायो। बारूदी सुरंगू विछायण वारन ईरानी बेड़न के भी निशानो बणाए पयो। उन खां अग बंदरी अब्बास में धमाकन जा आवाज बुधा वया हुआ। ईरानी मीडिया जो चवण आए तो बंदर अब्बास में सूरत हाल कंट्रोल में आए। अमरीकी सदर ट्रंप एक भेरो बीहर ईरान के धमकी डींदे चयो आए तो यूरेनियम अमरीका हवाले करनी पवंदी या बे कें काबिल कबूल जाए तो मुंतकिल करे तबाह करनी पवंदी, बियो को रस्तो ना है। यूरेनियम ईरान में ही रहंदी, अपने हुर्मुस के गालिन जो हिस्सो न बणाईंदासी, ईरान वाज़े करे छड़ियो। पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अज़ीज़ी चयो आए तो अमरीकी नाकाबंदी खत्म थी तो आपने हुर्मुस का गुजरण जो अमल असाजे तय कल इंतजाम तहत थींदो। ईरानी आपने हुर्मुस ते ईरान के खुदमुख्तियारी अमन मुआहदे ताई पहुंचण लाए अहम और असाजे अजीम कुर्बानी की बुनियादी सुतून में एक अहम जाग्राफियाई अहमियत है। आपने हुर्मुस के कदें भी गालिन जो हिस्सो न बणाईंदासी।

0: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समूरन मुसलमान मुल्कन का इब्राहिमी मुहिदे में शामिल थे मुतालबो कर छो। डोनाल्ड ट्रंप इब्राहिमी मुहिदे से सही की शुरुआत सऊदी अरब ए कतर का थियन घुर्जे, बाद में बया मुसलमान मुल्क भी लाजमी तौर मुहिदे से सही कन। ईरान की अमेरिका से मुहिदे बाद इब्राहिमी मुहिदे में शमूलियत।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियर दस्तियाब आई।
2: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
4: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0385 569 0300 003 8556 9।
5: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहराबपुर। राबते जे लाइ 03201800003।
6: अस्सलाम वालेकुम अदा।
7: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा।
8: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
6: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
7: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
8: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
7: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
9: 03013992836।
10: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।
11: एक था गुल एक थी बुलबुल बुलबुल बोली सुन बाबुल एक था गुल एक

शाह से पता करते हैं लोगों की दिलों को, शाह से पता करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। वीडियो FM 88 और साथ ही साथ प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम सी दिल, स्वीट सी हंसी, परफेक्ट पर्सनालिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आरजी रुखसार। इनकी आवाज हाउ यू कैसे हैं आप? आई होप जी जहां जहां भी मौजूद है बिल्कुल टिप टप से कूल, एक साउंड एकदम स्ट्रांग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं। जहां जहां भी मौजूद है बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद है और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरी पूरी तैयार है, पूरी पूरी एक बजे तक, क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, जो कि आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 टू 1 पीएम आपको और मेरा साथ रहता है। और ये खूबसूरती भरा खूबसूरत सा साथ जो कि आज भी जारी और सारी रहेगा पूरे पूरे एक बजे तक। प्रोग्राम में अगर हम सबसे पहले वक्त की बात करते हैं तो 11:18 पाकिस्तान का म्यारी वक्त है, जो कि तमाम तो लोगों की घड़ियों में बज रहा है। और इसके अलावा

सुने इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में हैं, ट्रक में हैं, रिक्शे में हैं, कार में हैं, बाइक पे हैं, जिस भी जहाँ भी जा रहे हैं, आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी, बट द नेवर अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। खुदा खैरियत मौजूद और तवक्कुल खुदा खैरियत मतलब।

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाद, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 0307-3592120।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटरी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, मुझे कहते हैं आरजे रुखसार. आपको और मेरे साथ पूरे पूरे एक बजे तक का है जी. और ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं. हमारा सेगमेंट होने वाला है जी, दैट इज सुर लगाओ गाना सुनाओ. और सुर लगाओ गाना सुनाओ में हम चलेंगे आगे और देखते हैं कि कॉलर कौन और कहाँ से हमारे साथ मौजूद होते हैं और कौन से गाने हमें सुनाते हैं. ठीक है जी, तो कॉल कर सकते हैं आप लोग 03000113488 के ऊपर. ठीक है जी, सो फर्स्ट कॉलर ऑन द कॉल और इस नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं. चेक करेंगे कौन और कहाँ से. हेलो, वालेकुम
1: सलाम.
0: ठीक हूँ, कौन बात करें कहाँ से. सॉरी आपकी आवाज में डिस्टर्बेंस है. थोड़ा सा सही जगह पे जाके बात करेंगे ताकि आपकी आवाज क्लियरली आ सके.
1: आवाज क्लियर
0: जी. जी नाम बताइएगा. मुझे बताएं कि गाना लेकर आए, कोई सुनाएंगे. तो मुझे ये बताइए कि किसी को डेडिकेट करना है. ओके जी, थैंक यू सो मच. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. गाना प्ले करने जा रही हूँ जी. जोगे भाई ने हमें कहा है कि ये वाला गाना प्ले कर दें, तो ये वाला गाना प्ले कर रहे हैं. द वन एंड ओनली अताउल्लाह ईसा खान, ईसा खेलवी. सो प्ले करते हैं, एंजॉय करते हैं और इसी के साथ हम आगे चलते हैं. स्टे ट्यून्ड.

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जैमे मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम

ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजे रुखसार आकर मेरा साथ पूरे पूरे 1 बजे तक का. सुर लगाओ गाना,

0: सुनाओ में एक बार फिर से वापस आ चुके हैं जी, और हम कॉल्स रिसीव करेंगे आप लोगों की. सो कॉलर मिसल लाइन पे मौजूद होंगे. नेक्स्ट चेक करेंगे कॉलर कहाँ से. हेलो,
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम.
0: वालेकुम अस्सलाम. सागर भाई बात कर रहे हैं. सागर भाई कैसे, ठीक ठाक?
1: खैरियत? ठीक ठाक मैम. कॉल नहीं लग रही है, 2-3 हफ्ते हो गए मैम कॉल मिला रहा हूँ. नंबर पावर ऑफ पावर ऑफ पावर ऑफ बता रहा है.
0: ओके जी, अब लग गई है. और हो सकता है ये लाइंस बहुत ज्यादा बिजी हो, है ना?
1: नहीं, बिजी की बात नहीं मैम. अगर बिजी उनको बिजी बताया ना. नंबर पावर ऑफ बता रहा था मैंने.
0: अच्छा, पावर ऑफ बता रहा था.
1: हाँ जी जी पावर ऑफ 3 हफ्ते से मिला रहा हूँ. पावर डाउन, पावर डाउन कर रहा है.
0: चले, अब कॉल लग गई है तो अच्छा सा गाना सुना दे हमें कोई.
1: गाने के लिए कॉल किया. आपको पता है गाने के लिए तो.
0: बिल्कुल बिल्कुल, सुनाए सुनाए.
1: प्यार छोड़ने वाले प्यार छोड़ने वाले क्या तुझे मिया तुझे मिया छोड़ने वाले प्यार की राह मुझको ये छोड़ने वाले.
0: ओके जी, वेरी नाइस. किसी को डेडिकेट करना है?
1: डेडिकेट किसी को करना नहीं. मेरे ये दो तरफ से बात कॉल लगी है. डेडिकेट किसको करूँ? वही दोस्त के सामने नहीं मुझे ना. मेरे पास बैठे हुए और 4 बजे वाले शो में नहीं आपका तो सुनता रहता हूँ.
0: बिल्कुल बिल्कुल, आज आएंगे आएंगे सारी शोज पे.
1: मेरी कॉल नहीं लगती है मैम, दूसरे की कॉल लगती रहती है. मैं प्रोग्राम सुनता रहता हूँ.
0: इनशाला ओके, आज आपकी कॉल जरूर लगेगी. बेफिक्र हो जाएं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें. ठीक है?
1: ठीक है मैम, ठीक है.
0: ओके जी, अल्लाह हाफिज. थैंक यू. गाना आपका ये रहा.

ओके जी, ब्यूटीफुल सॉन्ग. और मेरे पास एक और ब्यूटीफुल सॉन्ग है, और ये रिसेंटली रिसेंटली रिलीज किया गया है, द वेरी वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय समर जाफरी. और मैं ये प्ले करने जा रही हूँ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माय शो, तो उसको सुनेंगे, इंजॉय करेंगे. और इसी के साथ हम जाएंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक प्लस न्यूज ब्रेक की जानेब. आपने कहीं नहीं जाना, मेरा साथ देना है पूरे पूरे एक बजे तक, क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है.

0: वफाकी घरू वज़ीर मोहसिन नकवी जो मिना में पाकिस्तानी हाजिन जी कैंप्स जो दौरो हाजिन से मुलाकात भी कई। वफाकी घरू वज़ीर 100 वरें के जमाल के बुजुर्ग का संदस खैरियत पुछी रिहाइश खाधे पीते की सहूलत बाबत भी पुछो। ईरान अमेरिका गालिन में नाकामी जा इम्कान वधी वया गालिन में हकारी अग भराई की दावा कंदर अमेरिका जा ईरान ते बीहर हवाई हमला हमलन बाद बीहर वायदे की गाल भी करने लगो। सेंटकॉम जो चवण है तो अमेरिकी फौज दखण ईरान में ड्रोन लॉन्चिंग हंधन के निशानो बनाया बारूदी सुरंगू विछायण वाले ईरानी बेड़ के भी निशानो बनाया वो। ईरानी मीडिया तो चवण है तो बंदर अब्बास में सूरत हाल कंट्रोल में है अमेरिकी पदे वी वाको रोको। भारतीय शहर जयपुर में मीडिया से गाले तो कें भी तरीके से हरमुस खुलणो है हाने भी ईरान से वायदो मुमकिन है अमेरिकी सदर भी चाहे तो वायदो थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चाहे ईरान जो रचार्ज यूरेनियम अमेरिका हवाले वो जो तबाह कदी या वरी वो यूरेनियम ईरान से गड़ी ईरान में ही तबाह कर। डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया अकाउंट से तस्वीर शेयर कई जैमें ओबामा की पॉलिसी नदी के टोकरे में ॾेखारी वही। ट्रंप की पॉलिसी मूजिब अमेरिकी जंगी जहाज बम्बारी कर ॾेखारे वो। यूरेनियम ईरान में ही होंगे आबना हरमुस की गाल हिस्सो न बणबो। पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी है अमेरिकी नाकाबंदी खत्म थी तो आबना हरमुस का गुजरण जो अमल असाज तय कल इंतजाम तहत थो। ईरानी आबना हरमुस से ईरानी खुदमुख्तियारी अमन वायदे तीन पहुंचने के लिए अहम असानी अजीम कुर्बानी के बुनियादी सुतून में एक अहम जोग्राफी अहमियत है।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब है। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 0320180003।
3: खुशखबरी हानी अवांजे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राबते जे लाइ 0300-3583-569-0300-3855-69।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
1: न अदा।
3: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठन में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब हुयो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे मुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मीरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मीरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
4: 0301-399-2836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: क्या है?
1: हमारे प्यार की निशानी।
0: तुम इस रिश्ते को गलत समझ रही हो।
1: हमारा रिश्ता कुछ और ही बन चुका है अमर। वी बोथ लव ईच अदर।
0: देखो दे, दिशा प्लीज।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे जी एफ एम नेटवर्क
4: साथ साथ आप लोग मुझे कमेंट्स और मैसेजेस कर रहे हैं तो कमेंट्स की तरफ चलेंगे विदाउट एनी डिले क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के मुझे रिसीव हो गए हैं सॉरी मैसेजेस रिसीव हो गए हैं. हमें मैसेज आया है फ्रॉम मोरो खां गुलाम सरवर बगाई. गुलाम सरवर बगाई हमें सुन रहे हैं कहते हैं सर सलाम तवां खे तवां जी पूरी टीम खे डेडिकेशन बूरो खान लाखो एजाजुल्ला अमानुल्ला विसरो. थैंक यू सो मच आपका बहुत शुक्रिया. इसके अलावा जी हमें मैसेज रिसीव हुआ है विलेज वडेरो दोस्त से मोहम्मद जिस्कानी से सुन रहे हैं गुलाम अब्बास जिस्कानी मोहम्मद दाऊद जिस्कानी खालिद जिस्कानी मोहम्मद जिस्कानी एंड फिरदौस नहीं सॉरी कहते हैं कि फैन सॉरी भूल गया रेडियो फैन सॉरी भूल गया एडवांस ईद मुबारक प्लीज सॉन्ग सुनाएं जलाल चांडियो का और गाने का नाम भी लिख भेजा है इन्होंने. इसके अलावा जी और कहते हैं कि अगर प्लीज सुनाना वरना दिल बेचारा सो जाएगा और सो गया तो उठ नहीं उठेगा नहीं. अच्छा दिल भी सोता है आपका. ओके जी थैंक यू सो मच आपको बहुत बहुत शुक्रिया. इसके अलावा कमेंट्स की तरफ आते हैं तो बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के सो नूर हुसैन तुनिया ने हमें कमेंट किया है थैंक यू सो मच और देखते हैं कि गुड मॉर्निंग हैव अ नाइस डे अल्लाह ब्लेस यू थैंक यू भाई.

ओके जी, इसके अलावा हम चलते हैं आगे और कॉल्स लेते हैं आप लोगों की कॉल लेने के लिए 03000113488. चेक करेंगे जी नेक्स्ट कॉलर कौन है, कहाँ से. हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही मुझे. हेलो हेलो, ओके जी 03000113488. इसके ऊपर कॉल कर रहे हैं आप लोग और जी कॉल करने के बाद टाइम टेस्टर बता रहे हैं, सुना रहे हैं.

0: okay, next caller. Hello, assalamu alaikum.
1: Walaikum assalam. Sab sunne walon ko bolta bolo jaane ki to advance mein Eid Mubarak ho.
0: Aapko bhi advance mein Mubarak.
1: Kis qadar ehsaas hai kudrat ko mere dard ka. Jaagte rehte hain tare girat par mere liye. Hai dafn mujh mein kai ronak hai mat pooch. Are ujal ujal ke jo basta raha wo shahr mein.
0: हसबेहाल
1: आपके लिए कि जिस शख्स ने न तुझे चाहा मांगा भी नहीं, अरे उस शख्स को तो मिल भी जाए तो इंसान
0: इंसाफ है,
1: अल्लाह करेगा पर्तन पाक के सत्य में। और गजल से पहले एक चुप्स दे रहा हूँ कि शुरू और आखिर में सुना के बाद आज 470 दफा यार बात जरूर पढ़े आपके इल्म में, आपकी सेहत में, आपकी जिंदगी में और हर चीज में आपसे बरकत होगी। और जाते जाते वो समझा कि वो छोटी छोटी सभी ख्वाहिशों को मारे तो वो छोटी छोटी सभी ख्वाहिशों को मारे तो मेरी तरह से कोई जिंदगी गुजारे तो मैं गया वक्त हूँ लेकिन मैं लौट आऊंगा खलूस दिल से वो एक बार पुकारे तो मैं उसका आईना बन जाऊंगा, वो मेरा चेहरा है। ऐसा ही है ना?
0: ऐसा ही है, ऐसा ही है।
1: मैं आईना हूँ दिखाऊंगा घर चेहरों के, अरे जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए, मैं उसका आईना बन जाऊं वो मेरा चेहरा, वो मेरे सामने खुद को कभी सवारे तो।
0: अरे वाह।
1: निकल कर घर से साहिल पर आ तो जाऊं मगर लगा सके ना अगर पार ये किनारे तो, वो मेरे दुख की अजियत समझ नहीं सकता, वो मेरे दुख की अजियत समझ नहीं सकता, किसी को जीत कर अपनी खुशी से हारे तो।
0: अरे
1: खुद अपने कदमों पे, किसी को जीत कर अपनी खुशी से हारे तो खुद अपने कदमों पे चलना पड़ेगा फिर तो नदीम, तुझे गिराएंगे नजरों से ये सहारे तो, तुझे गिराएंगे नजरों से ये सहारे तो। तू किसी की हर्फ दुआ में है, तू किसी की हर्फ तलब में हो, तुझे चाहता कोई और है, तुझे मांगता कोई और है, सबके आले मोहम्मद से जो बेटा मांगो सबके आले मोहम्मद तो सबको मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद अल्ता बलो जाग जानी को सबको सलाम है मोहब्बत।
0: ओके जी अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच जाग जानी अंकल। और इसी के साथ हम चलते हैं आगे, और आज हज का बाबरकत दिन है, और हज एक ऐसी इबादत है जो हमें इज्तमाईयत इत्तेहादियत का दर्स देती है। और जितने भी लोग हैं इस वक्त जो हज को अदा करेंगे, चाहे वो किसी भी रंग से हो, किसी भी नस्ल से हो, चाहे वो रंगो नस्ल का इम्तियाज हो, चाहे जात पात का इख्तलाफ हो, आज वो एक होकर तवाफ करेंगे। और हज एक ऐसी इबादत है जो कि इन सबको खत्म कर देती है। इस इबादत की जहाँ बेशुमार फजीलतें हैं, वहीं इसमें बेशुमार हिकमतें भी पोशीदा हैं। हज के लगवी मायने
2: बिखरे हुए
0: अल कसद के हैं। अल कसद यानी इरादा करना।
2: हिम्मत के तलबगार है हम नबी का मौला।
0: इसके अलावा तवाफ और वकूफ अपने वक्त में बहालत एहराम से पहले हज की नियत से अदा करने से, हज

और कुरान करीम में हज की फजीलत और अहमियत का जिक्र कुछ इस तरीके से किया गया है कि और अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज फर्ज है जो भी इस तक पहुँचे पहुँचने की इस्तेआत रखता हो। अल्लाह ताला फरमाता है कि हज और उम्रे को पूरा करो। हज का बाबरकत दिन आज के दिन बहुत सारे लोग बहुत सारी दुआएं करेंगे और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आज के दिन बहुत सारी दुआओं को कबूल किया जाता है, हर उस दुआ को कबूल किया जाता है जो आप मांगते हैं। तो दिल खोल के मांगे आज।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
2: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
4: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
5: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
6: अस्सलाम वालेकुम अदा।
7: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे।
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
6: मुझे दुकान जी बे डरंदी?
7: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफएम 94।

0: फायर।
1: किनारे के खड्डे में खिसका दी, किनारे के खड्डे में खिसका दी।
0: अच्छा अच्छा किनारे खड्डे में खिसका दी, तो मन में

अरे वाह, क्या बात है जी, क्या बात है, आ गए और छा गए सागर भाई. ओके जी, जबरदस्त. और कुछ कहेंगे?

0: अरे वाह, क्या बात है जी, क्या बात है, आ गए और छा गए सागर भाई. ओके जी, जबरदस्त. और कुछ कहेंगे?
1: तीन हफ्ते की लेट मैंने निकाल ली थी.
0: चलिए जी, जबरदस्त. और

Yogi ji, welcome back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजे रुखसाए, आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का हिस्ट्री. और इसी के साथ हम चलते हैं आगे. बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारी लाइव कॉल्स भी आप लोगों की हम रिसीव करेंगे. सो नूर हुसैन तनियो ने हमें कमेंट किया है जी फ्रॉम समंदर पार पाक इंडिया जीरो लाइन. गुड मॉर्निंग. अच्छा, वहाँ से मैसेज कर रहे हैं जी. ओके, वेरी गुड. और बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों के. अच्छा, मैसेज रिसीव हुआ है. मजबूरी है ना, मजबूरी है. कौन सी मजबूरी है. अगे विलेज वडेरो दोस्त मोहम्मद जिस्कानी से सुन रहे हैं. गुलाम अब्बास जिस्कानी, मोहम्मद दाऊद जिस्कानी, खालिद जिस्कानी, मोहम्मद जिस्कानी, थैंक यू सो मच. आपने अगेन वही मैसेज किया है. और डीजे रिमेक्स सॉन्ग प्लीज सुनाना, वरना दिल बेचारा सो जाएगा. अगर सो गया तो उठ नहीं पाएगा. अच्छा, बड़ी गहरी नींद होता है आपका दिल. और गाना प्ले करने जा रही हूँ जी.

0: काफी टाइम बाद
1: हर किसी से लड़ते
0: कहां
1: के सच्चे थे
0: ये सॉन्ग
2: मिलके बिछड़े थे
0: सुनेंगे एंजॉय करेंगे
2: आंसुओं में
0: साथ में लास्ट लकी कॉलर्स
3: आंखों से निकला हुआ हर पानी आंसू नहीं होता।

हज जो रुकने आजम वकूफ अरफा अदा कर पे वे इनके हज पंधी अड़ा मीना के मैदान में पहुंची वह ज़ोर की नमाज का हज खुतबो थो हज पंधी अड़ा सिज लहण का मुज़दलिफा रवाना थींदा रात खुलल आसमान में गुजारींदा। पाकिस्तान ए चीन विच में स्ट्रेटजिक सहकार मजबूत करण ते इतफाक चीन ए पाकिस्तान पारा गडल पधाई जारी पधाई मुजिब सीपैक पॉइंट 20 की तरक्की ग्वादर पोर्ट के इलाके के राबते वारो मरकज बनाने ते इतफाक दहशतगर्दी खिलाफ मिटे मयार की मुखालफत भी वजाई वही पाबंदी बनल जीडीपी में दहशतगर्द तंजीम खिलाफ गडल मौकफ वजाया वो चीन ईरान अमेरिका जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की वाखाण कई पाकिस्तान में चीनी शहर में मनसूबन की सिक्योरिटी सख्त करण जो अज़म पाकिस्तान पारा ताइवान मामले से चीन के मौकफ की हिमायत है।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम बहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जै में मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड महरापुर राब्ते जे लाइ 0320-1800-003।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
3: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 0301-399-2836
4: मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1550-724।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: एलोवेरा फैन
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: खुशखबरी खुशखबरी, हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, 3 रोड, मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0385 569 0359।
4: अदा
5: वालेकुम असलाम। अदा छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न? अदा
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 0301-399-2836।
8: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।
9: स्टूडियो प्रेजेंट्स।

ईरान अमेरिका ॻाल्हियुनि में नाकामियुनि जा इम्कान वधी विया ॻाल्हियुनि में हाकारी अॻभराई जी दावा कंदड़ अमेरिका जा ईरान ते ॿीहर हवाई हमला हमलनि बाद ॿीहर माहिदे जी ॻाल्हि बि करणु लॻो सेंटकॉम जो चवण आहे त अमेरिकी फ़ौज ॾखण ईरान में ड्रोन लॉन्चिंग हंधनि खे निशानो बणायो बारूदी सुरंगू विछाइण वारनि ईरानी ॿेड़ियुनि खे बि निशानो बणायो वियो ईरानी मीडिया जो चवण आहे त बंदर अब्बास में सूरतहाल कंट्रोल में आहे अमेरिकी परॾेह वज़ीर मार्को रूबियो भारती शहर जयपुर में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त कंहिं बि तरीक़े सां हरमुज़ त खुलणो आहे हाणे बि ईरान सां मुआदो मुमकिन आहे अमेरिकी सदर बि चाहे थो त मुआदो थिए।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा।
3: यार आजी कल शहरन तोड़े गोछन में जीए मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
4: 0301-399-2836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते, पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो, कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान खे समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 खां राति 8 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राब्ते जे लाइ 0385-569-0300-3883-8556
1: शदीद गर्मीअ सबबि शहरनि खे गुज़ारिश कई वञे थी त सुबुह 11 खां शाम 4 ताईं ख़ासि एहतियाती तदबीरूं अख़्तियार कनि गैर ज़रूरी तौर ते ॿाहिरि न वञो हल्का कपड़ा पायो मथो ढके रखो ऐं उन दौरान शदीद जिस्मानी कम खां पासो करियो ॿारनि बुज़ुर्गनि ऐं बीमार माण्हुनि जो ख़ासि ख़्यालु रखो वधीक पाणी पीओ ऐं महफ़ूज़ रहो ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध PDMA कमिश्नर कराची के इलेक्ट्रिक ऐं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जे तावन सां पेश कयो वियो
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
3: न अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
4: हाँ अदा कारोबारी इश्तेहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
4: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-399-2836
5: मोहम्मद उमेर गोरी 0319-15-5-724
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो GFM 94

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94 मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन
1: बंदे विच में लागा पो छुटकारे जो जरियो आहे इमाम मस्जिद नबी अली अब्दुल रहमान रज़ीफा जो मस्जिद निमारा में हज जो खुतबो हज जो खुतबे में चयो त ईमान वारो अल्लाह खां डिजो ऐं तकवा इख़्तियार करे वाइदे जी पासदारी कयो तकवा इख़्तियार करण ईमान वारनि जो शान आहे कंहिंखे बि अल्लाह ताला सां शरीक न कयो आख़िरत जी तयारीअ जो सभ खां अहम अमल तौहीद अल्लाह ताला जी इबादत आहे तौहीद ते अमल करण ईमान जो हिसो आहे हज़रत मोहम्मद सलाहु वसलम अलाह जो आख़िरी नबी आहे तकवा इख़्तियार कंदड़नि खे जन्नत जी ख़ुशख़बरी ॿुधाई वई आहे सब्र कंदड़नि जे लाइ अल्लाह ताला अज़ीम अजर जो वाइदो कयो आहे अल्लाह जो फरमान आहे त हमेशा कूड़ खां बचो अल्लाह ताला मुसलमाननि जी हालत ते रहम फरमाए हज जे ख़ुतबे में ख़ुसूसी दुआ मिना खां अरफात पहुतलु लखे हज पाधीअ हज जो मुखर खुन वुकूफ़ अरफा अदा करे वरितो हाजी सगोरनि हज जो ख़ुतबो ॿुधण खां पोइ ॿेपहरी ऐं टेपहरी जी निमाज़ गॾु अदा कई हाजी सगोरा सजल थिए सुमहरी जी निमाज़ बि गॾु अदा करण खां पोइ मुंतल खां रवाना थींदा जिते समूरी राति खुलियल आसमान हेठि गुज़ारे रब खे राज़ी करण जे लाइ दुआऊं घुरंदा।

ईरान जारह अमेरिका के सख्त चमाटम हाय कढ़ी अल्लाह अकबर के हथियार ईरानी कौम की कुवत ए ताकत अदा कई ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई जो हज के मौके पैगाम मुश्तबा खामनाई चाहे तो खिते जो कौमू ए मुल्क हाँ अमेरिकी अडन के लिए ढाल न बनजंदा अमेरिका के हाँ खिते में भाईवार फौजी अडन के क्याम के लिए महफूज पनाहगाह न मिली मुस्तकबिल उम्मत इस्लामिया नई इस्लामी तहजीब जो है इसराइल पैं उमिर के आखिरी मरहले के वेझो पहुंची चुको है।

वफाकी घर वजीर मोहसिन नकवी जो मिना में पाकिस्तानी हाजिन की कैंप जो दौरो हज पंदिर से मुलाकात भी कई वफाकी घर वजीर 100 वर की जमार के बुजुर्ग का संदस खैरियत पुछी रिहायश खाधे पीते की सहूलत बाबत भी पुछो। पाकिस्तान चीन विच में स्ट्रेटेजिक सहकार मजबूत करने तफाक चीन ए पाकिस्तान पारा गडल पधराई जारी पधराई मूजिब सी पैक 0.20 की तरक्की ग्वादर पोर्ट के इलाके के राबते वारो मरकज बनाने से तफाक दहशतगर्दी खिलाफ मिटे मयार की मुखालफत में बचाई वही पाबंदी मल TTP बेन दहशतगर्द तंजीम खिलाफ गडल मौके पर जाया वो चीन ईरान अमेरिका जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिश की वाखाण कई पाकिस्तान में चीनी शहर में मनसूबन की सिक्योरिटी सख्त करने जो अज़म पाकिस्तान पारा ताइवान मामले में चीन के मौकफ की हिमायत है।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0300 385 569 0300 3855 69।

ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।

0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03-20-18-00-003
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बे डरंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तेहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836
3: आई मोहम्मद उमेर गोरी 03151557724
5: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GA FM 94

0: It's 3:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: मेरा वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: शदीद गर्मी सबब शहरन के गुजारिश कई वने थी तो सुबह 11 वगे खां शाम 4 वगे ताई खास एहतियाती तदबीरू अख्तियार कन। गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दौरान शदीद जिस्मानी कम का पासो करियो। बारन बुजुर्गन बीमार मानन जो खास ख्याल रखो, वधिक पानी पियो, महफूज रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध PDMA कमिश्नर कराची के इलेक्ट्रिक सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश कयो वयो।
2: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधीक राबते जे लाइ 0383-5769।
2: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।

0: पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में तो भाई साहब क्या समझे।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे।
2: दरहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीम रोजानो सुबह GFM
0: वसूल करने पर भी जीत। बाहर से भेजे गए रकम बैंक अल हबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम, जैसे के साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉच। 1320 से ज्यादा ब्रांचेस। अपनी रेमिटेंस से बयान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब
1: रिश्ता भरोसे का सुबह।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: रब खां सिवाय कंहिं बि गैर जी इबादत न कजो। मुसलमाननि खे हर मुसीबत में सब्र जो दंग न छॾणु घुर्जे। अल्लाह ताला ऐं बंदे विच में लाॻापो छुटकारे जो ज़रियो आहे। इमाम मस्जिद नबी अली अब्दुरहमान अल-हुज़ैफा जो मस्जिद निमरा में हज जो खुतबो। हज जे खुतबे में चयो वियो त ईमान वारो अलाह खां डिॼो ऐं तकवा इख़्तियार करे वाइदे जी पासदारी कयो। तकवा इख़्तियार करणु ईमान वारनि जो शान आहे। कंहिंखे बि अल्लाह ताला सां शरीक न कयो। आख़िरत जी तयारी जो सभ खां अहम अमल तौहीद ऐं अल्लाह ताला जी इबादत आहे। तौहीद ते अमल करणु ईमान जो हिसो आहे। हज़रत मोहम्मद सलाहु वसलम अलाह जो आख़िरी नबी आहे। तकवा इख़्तियार कंदड़नि खे जन्नत जी ख़ुशख़बरी ॿुधाई वई आहे। सब्र कंदड़नि जे लाइ अल्लाह ताला अज़ीम अजर जो वाइदो कयो आहे। अल्लाह जो फरमान आहे त हमेशा कूड़ खां बचो। अल्लाह ताला मुसलमाननि जी हालत ते रहम फरमाए। हज जे ख़ुतबे में ख़ुसूसी दुआ।

मीना खां मैदान अरफात मतल वी लख का वधीक हज पांदी रन हज जो मुख रुकन वकूफ ए अरफा अदा कई वरतो हाजी सगोरन हज जो खुतबो बुधण का पोए बेपारी ए टेपारी जी नमाज गद अदा कई हाजी सगोरा सिजल थे सोमणी जी नमाज भी गद अदा करण का पोए मुज़दलफा रवाना थिना जिते समूरी रात खुले आसमान हेठ गुजारे रब के राजी करण जे लाए दुआ घुरंदा ऐं सुभाणे शैतान खे पथिरण खां पोइ अहराम खोले छॾींदा बाद में समूरा हाजी सगोरा सुनत इब्राहिम तहत जानवरनि जी कुर्बानी कंदा वफाकी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जो मीना में पाकिस्तानी हज पांधियरनि जी कैंप्स जो दौरो मोहसिन नक़वी हज पांधियरनि सां मुलाक़ात कई ऐं सहूलियतुनि जो जाइज़ो वरितो

पाकिस्तान ऐं चीन विच में स्ट्रेटेजिक सहकार वधीक मज़बूत करण ते इतफ़ाक़ चीन ऐं पाकिस्तान पारां गॾियल पधिराई जारी। पधिराई मूजिब सीपैक पॉइंट 2.0 जी तरक़ी ऐं ग्वादर पोर्ट खे इलाइक़े जे राब्ते वारो मर्कज़ बणाइण ते इतफ़ाक़। दहशतगर्दीअ ख़िलाफ़ मिटे मयार जी मुख़ालफ़त बि भरिजाई वई। पाबंदी मिलियल TTP ऐं ॿियनि दहशतगर्द तंज़ीमुनि ख़िलाफ़ गॾियल मौक़िफ़ भरिजायो वियो। चीन ईरान अमेरिका जंगबंदी जे लाइ पाकिस्तान जे कोशिशुनि जी वाखाण कई। पाकिस्तान में चीनी शहरनि ऐं मनसूबनि जी सिक्योरिटी सख़्त करण जो अज़म। पाकिस्तान भारत ताइवान मामले ते चीन जे मौक़िफ़ जी हिमायत।

0: गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं मा अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-3592120

पाकिस्तान समेत समूरी दुनिया के 20 लख का वधीक हज पातेड़न हज जो मुख रुकन वक्फ अरफा अदा करे मस्जिद नबरामा मस्जिद नबवी के इमाम अली अब्दुल रहमान अल हुज़ैफी हमारन के मुसीबत में सफर जो दग न छड़न घुर्जे सफर करने वारन लाए अल्लाह वडे अजर अजर अजीम जो फायदो किया है।

लखें मस्जिद जो को कई हाजी सगोरा सिजल मसल पा रवाना थींदा जिते समूरी रात खुलियल आसमान हेठ गुजारींदा हाजी सगोरा सुभाणे शैतान के पथरियूं हणण खां पोइ अहराम खोले छॾींदा बाद में सुनत इब्राहिम तहत जानवरनि जी कुर्बानी कंदा पाबंदी मड़ियल टीटीपी ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट समेत कंहिं बि दहशतगर्द ग्रोह के कंहिं बि सरज़मीन तां इलाकाई सलामती के नुकसान पहुचाइण जी इजाज़त न ॾिबी पाकिस्तान ऐं चीन जो इतफ़ाक ॿिन्ही मुल्कनि जो अफ़गानिस्तान जे लाॻापा जारी रखण ते बि इतफ़ाक़ करे वरितो पर ई मैसी पैक जी तरक़ी ऐं गवादर पोर्ट के इलाक़ाई राब्ते वारो मर्कज़ पाइण ते इतफ़ाक़ कयो वियो दहशतगर्दी जे ख़िलाफ़ मिटे मयार जी मुख़ालफ़त चीन ईरान अमेरिका जंगबंदी लाइ पाकिस्तान जी कोशिशनि जी वाखाण कई पाकिस्तान में चीनी शहरियुनि ऐं मनसूबनि जी सिक्योरिटी सख़्त करण वारे अज़म जो बि वरितो अमरीका जा जंगबंदी बावजूद ॾखण ईरान में मुख़्तलिफ़ हंधनि ते हमला अमरीकी फ़ौज पारां ईरान जे ड्रोन लॉन्चिंग हंधनि ऐं बारूदी सुरंगूं वछाइण वारनि ईरानी ॿेड़ियुनि खे निशानो बणाइण जी दावा अमरीकी सेंटकॉम आहे त अमरीकी फ़ौज जारी जंगबंदी दौरान सफ़र जो मुज़ाहिरो कंदे पंहिंजो दिफ़ा कंदी अमरीकी परॾेही वज़ीर मार्को रोबियो भारतीय शहर जयपुर में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो कंहिं न कंहिं तरीक़े सां हुरमुस त खुलणो आहे हाणे बि ईरान सां मुआदो मुमकिन आहे अमरीकी सदर बि चाहे थो त मुआदो थिए ईरानी पासदारनि इंकलाब गार्ड्स पारां अमरीकी MQ-9 जोन किराइण जी दावा ईरानी मीडिया मूजिब ईरानी पासदारनि गार्ड्स अमरीकी F-35 जंगी जहाज ते फायरिंग बि कई ईरानी फ़ौज जे तर्जुमान अबुल फज़ल शकारजी चयो आहे त जंगबंदी जी भजगड़ी ते रदे अमल अॻ खां वधीक शरीफ़ ऐं ताक़तवर हूंदो ईरान अगराई कंदड़ अमरीका खे सख़्त चमाट बाहि कढी अलाह अकबर जे हथियार ईरानी क़ौम खे कुवत ऐं ताक़त अदा कई आहे ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनाई जो हज जे मौक़े ते पैगाम मुश्तबा ख़ामनाई चयो त ख़िते जूं क़ौमूं ऐं मुल्क हाणे अमरीकी अॾनि लाइ ढाल न बणंदा अमरीका मुस्तक़बिल उमत इस्लामिया ऐं नई इस्लामी तहज़ीब जो आहे इसराइल पंहिंजी उमिरि जे आख़िरी मरहले जे वेझो पहुची चुको आहे वॾो वज़ीर सैयद मुराद अली शाह ॾारकी पहुतो ॾारकी दरबार पहुची साईं साधराम जे देहांत ते वारिसनि सां ताज़िर वॾे वज़ीर चयो आहे त साईं साधराम जे विछोड़े सां वॾो ख़ाल पैदा थियो आहे उमेद थो कयां त साईं साधराम जो मोहबत ऐं अमन जो पैगाम ॾिनो हो संदसि पोयर ऐं पोइ लॻ इन पैगाम ते हलंदा रहंदा अठाई टिन सालनि खां प्रिया कुमारी बाज़ियाब न थियण ते हुकूमत शर्मिंदा आहे संदसि बाज़ियाबी लाइ पुलिस कोशिश करे पई दरू वज़ीर बि इन खे ॾिसे पए वॾो वज़ीर सैयद मुराद अली शाह चयो त कच्चे मां धाड़ेलनि जे मुकमल ऑपरेशन जारी रहंदो घुट न पर उन रग हो गार्डर किरियो हो पाकिस्तान समेत समूरी दुनिया जे 20 लख खां वधीक हज पातेड़नि हज जो मुफ़्त अरफा अदा कयो मस्जिद नबरामा मस्जिद नबवी अब्दुल रहमान अल हुज़ैफ़ी हज़रत चयो त मुसलमान मुसीबत में सफ़र जो दग न छॾणु घुर्जे

0: Rapper, Rapti Jilai, Asim Hussain Arai, 0307-359210.
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर।

पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301 91 896

0: क्या देख रहे हो?
1: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ग्लोबली ट्रांसफर, आपका पैसा दुनिया के किसी भी तक मिनटों में पहुंचता है। 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लगे जाएं। भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: सुबह की

0: قال الله تعالى:
1: وأنه يحيي الموتى
0: ذلك بأن الله على كل شيء قدير،
1: وأنه يحيي الموتى
0: آتي
1: وأنه
0: على كل شيء قدير.
2: पाकिस्तान समेत समूरी दुनिया के 20 लख का वधिक हज पांडियड़न हज जो मुख्य रुकन वकूफ अरफा अदा करे वरतो। मस्जिद नबरा मां मस्जिद नबी के इमाम अली अब्दुल रहमान अल हुजैफी हज जो खुतबो डींदे चयो त मुसलमानन के मुसीबत में सबर जो दग न चढ़न घुर्जे। सफर करण वारन लाए अला वडे अजर अजीम जो वायदो कयो आहे। जिन कौमन जुल्म कयो ऐं नाशुकरी कई उन्हनि खां नेमतूं खसियूं हुयूं। ऐं ईमान वारो अल्लाह खां डिजो ऐं तकवा अख़्तियार करे वायदे जी पासदारी करियो। तकवा अख़्तियार करण ईमान वारनि जो शान आहे। कंहिंखे बि अल्लाह ताला सां शरीक न कयो ऐं रब खां सवाइ कंहिं बि गैर जी इबादत न कयो। अल्लाह ताला मुसलमाननि जे हाल ते रहम फरमाए।

मिथे हज जी सगोरन मस्जिद नमरा में हज जो खुतबो बुधण का पोए दुपहरी ए टिपहरी जी नमाज गड अदा कई। हाजी सगोरा सिज लते वसल पार रवाना थींदा। मुरी रात खुलियल आसमान हेठ गुजारींदा। हाजी सगोरा सुभाणे शैतान के पतनू हणण खां पोए अहराम खोले छॾींदा। बाद में सुनत इब्राहिम तहत जानवरनि जी कुर्बानी कंदा।

0: जो तेल वहाँ के मिली वाले तो वो देखो असर लगा सको था उन काफ़ी फर्क पौ या घर में मिठी सोडा होंगी है वह लगा इनशाला उन भी काफ़ी फर्क
1: कॉलर लाइन से मौजूद है अस्सलाम वालेकुम
2: सर
1: जी अदा केर गल पे
2: केर साहब
1: जो गल है सर साहब जो गल है सर साहब साहब यो छा पुछने डॉक्टर साहब का
2: सर जिस्म में कमजोरी भी रहे डाड़ी
1: भाई अच्छा जिस्म में कमजोरी इन मसले ले फोन करी इलाज मौजूद आले वा डॉक्टर वट को मसलो ही कोने को एफएम बुद डॉक्टर बुदाई जी सर को दे एफएम बुद
0: सेम बिल्कुल रूबरू हो जाए इंशाल्लाह ताला उन जी ट्रीटमेंट है
1: तो वहां है सर जी गाल जी मेरा पर एफएम 94 जो आवाज समझ समात में पहुंचे पियो 0301-2196-851 एक बियो कॉलर लाइन पे मौजूद जिसो के सानो कॉलर कर हुंदो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम साईं मुजा केर साहब पे गलाए ए
2: वकार अली बुड्डी पे गलाए
1: साहब बुड्डी साहब के छा पुछना डॉक्टर साहब का मुजा भा
2: जी सही जो वार छणी दांजन सही
1: वार छणी दांजन दिमाग की कमजोरी है
2: जी सही
1: ठीक है घणियो मेरा
2: सही तकरीबन 15 साल
1: अच्छा को मसलो ही कोने को बुधे एफएम बुधो डॉक्टर साहब वहां के बुधाइंदो
0: जी प्रॉपर ट्रीटमेंट मौजूद है अदे के जदा सी रूबरू देखन वना सत बादाम रोजाना रात जो पानी में पैसा रखन सुबह जो नेरा ने खैन इंशाल्लाह ताला काफी फर्क पे
1: थी वक्त है कमर्शियल ब्रेक जो पेरियालो था कमर्शियल ब्रेक की तरफ
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट आई मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
4: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94

0: साहिबनि हुतां दुआ बंदि करे छॾी हूंदी।
1: बिल्कुलु सही पिया चयोसीं, बिल्कुलु ईअं ई थींदो आहे। असां हालांकि पेशंट्स खे चवंदा आहियूं त बाबा हीउ हिकु दफ़ो दवा ॾिनी आहे, हीअ का अंग्रेज़ी दवा न आहे जो तव्हांखे जेको आहे सो फ़िलहाल छॾे वञे वरी पई थिए। हिन खे जेकॾहिं तव्हां मुकमल तरीक़े सां इस्तेमालु कंदव त तव्हांजी तकलीफ़ मां जन छुटी वेंदी आहे। अॼु बि हिकिड़ो ताज़ा मिसाल आहे त हिकिड़ो पेशंट हुयो जेको 1.5 साल खां बाद में मूं वटि आयो, नंढी खे वठी आयो। अलहमदिल्ला हिकिड़ी शिफ़ा जी ॻाल्हि आहे त हुनखे त जेको आहे सो हिकिड़ी चकर सां फ़र्क़ु जो पइजी वियो त उहो वीचारो मज़दूरी कंदो आहे, कराची वेंदो आहे, पर नंढड़ी खे वरी अॼु वठी आयो त हुनखे हाणे एतिरे टाइम खां बाद में वरी मथे में जेको आहे सो मलो। सो बहरहाल चवण जो मक़सदु इहो हूंदो आहे त अहिड़े क़िस्म जी जेकी पेशंट कहिड़ो बि हुजे उनखे तकरीबन जेको असां चवंदा आहियूं त 2-3 महीना मुकमल कोर्स करायो, त उनजो मक़सदु इहो ई हूंदो आहे त फ़िलहाल 10 ॾींहनि जी दवा ॾींदा आहियूं त हुनखे मुकमल तरीक़े सां ॿियो न त घटि में घटि एटलीस्ट 1 महीनो दवा कंटिन्यू हलाए त उनखे काफ़ी जेको आहे सो
0: फ़र्क़ु
1: छो जो हीअ सिर्फ़ु चमड़ी में ॿाहिरां न हूंदी आहे, रत जो बिगाड़ हूंदो आहे, रत में अंदरि सफ़ाई करणी हूंदी आहे त उनजी दवा मुकमल जॾहिं हलंदी तॾहिं ई फ़र्क़ु थींदो आहे। जी साईं,
0: हिकु ॿियो कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे, कॉल जी तरफ़ ईंदासीं। अस्सलाम अलैकुम।
2: हेलो,
0: वालेकुम सलाम। पंहिंजो मेज़बान हाकिम अली जिस्कानी सां गॾु आहे, तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं दोस्तनि जंहिंमें छा असीं गुज़ारिश कंदा आहियूं भाउ जॾहिं बि तव्हां कॉल करियो त रेडियो सेट खे बंदि रखो, जेकॾहिं तव्हां पंहिंजो आवाज़ु पाण ॿुधणु चाहींदो त पोइ तव्हांजो आवाज़ु असां वटि त कोन ईंदो, मजबूर असांखे इहा कॉल ड्रॉप करणी पवंदी या ख़ुदि ई कटिजी वेंदी। कॉल जी तरफ़ ईंदासीं, ॾिसो हीउ कॉलर किथां जो असां सां गॾु हूंदो। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम
0: सलाम। हा जी, छा पुछणु चाहींदा
2: दादा?
1: जॾहिं रग ब्लॉक थी वेंदी आहे त पोइ इन जे करे ई जेको आहे प्रॉब्लम थींदो आहे। उन जे लाइ बहितरीन दवाऊं होम्योपैथिक में मौजूदु आहिनि ऐं मुकमल कोर्स मौजूदु आहे। फस्ट एड तौर ते त तव्हां का बि मालिश कंदव ऐं उनमें ऐं घणा दोस्त मां मालिश जे लाइ बि हालांकि मना कंदो आहियां घणो, सो हाणे बि काफ़ी पेशंट्स आहिनि त असां मालिश कईसीं, उन में वधीक सोज वधी वई ऐं वधीक तकलीफ़ वधी आहे। हालांकि असां बार बार चवंदा आहियूं त इनखे मालिश न आहे करणी, वधि में वधि असां ॾसियल हिकिड़ो जीअं क़ुदिरती तौर ते असां तेल ॿुधाईंदा आहियूं त सरह जो तेल आहे, उनखे गरम करे उनमें हेठि विझी ऐं उहो तव्हां सिर्फ़ु अप्लाई कयो, यानी अप्लाई करण जो मक़सदु इहो सिर्फ़ु तव्हां लॻाए छॾियो। जॾहिं उहो अंदरि चमड़ी में जज़्बु थी वेंदो त रगुनि में ऐं हॾनि में पाणी उहो पंहिंजी ताक़त रखंदो त उन सां ख़ुदि बि अज़ ख़ुदि जेको आहे सो तव्हांखे रिलीफ़ मिली वेंदो आहे। पर उहो बि ॾिसो फस्ट एड तौर ते यानी आरज़ी तौर ते फ़िलहालु तव्हांजी तकलीफ़ खे घटाए सघे थो, लेकिन मुकमल ट्रीटमेंट जे लाइ मुकमल दवा होम्योपैथिक में तव्हां इस्तेमालु कंदो तॾहिं तव्हांखे फ़ाइदो पवंदो।
0: हिकु कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे, कॉल जी तरफ़ ईंदासीं। अस्सलाम वालेकुम।
2: وعلیکم السلام سر مجھے اما گھراڑی ہے انہوں نے اندر 70 سال کی جی
0: جی
2: مجھے موشن پران لگا
0: ہاں اچھا موشن نہ تھا بیان کا
2: سر یہ ماس بلڈ پریشر ہائی تو رہے
0: اچھا بلڈ پریشر ہائی تو رہے تھے یہ اصل چاہے تمہارا ایجڈ ہے بہتر ہے دارو برو دکھارے ونت بڑی بہتر ہے باقی ایس ایم بدو ڈاکٹر صاحب سے بتائیں گے جی
1: जी साईं बिल्कुलु मूंखे बि इहो ई ॾिस ॾींदासीं त जेको आहे सो बिल्कुलु हिकु त चांहि ऐं खीरु ऐं मानी हुनजी बिल्कुलु बंदि करणी आहे, सिर्फ़ु खिचड़ी इस्तेमालु करणी आहे, केलो इस्तेमालु करिणो आहे, केले में स्पंगुर जी दुही विझी उहा इस्तेमालु करणी आहे, जीरो तव्हां उनखे फकराए सघो था चमची खनि, उनखां पोइ हर खाधे खां पोइ सौंफ़ चूसराए उन सां बि काफ़ी अफ़ाको अची वेंदो आहे, वरना दवा मौजूदु हूंदी आहे। जेकॾहिं फ़र्क़ु पइजी वञे थो हिन अमल सां ठीकु आहे, वरना उहो बोल ॾेखारे सघूं, लेकिन परहेज़ बि मस्त आहे, यानी चांहि खीर वग़ैरह तव्हांखे मुकमल बंदि करिणो आहे। ओके,
0: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि, कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे, ॾिसो किथां जो कॉलर हूंदो। अस्सलाम वालेकुम। हलो, अस्सलाम वालेकुम। पोइ साईं ॻाल्हायो। हलो
2: हा
0: साईं,
2: डॉक्टर साहब खां इहो पुछंदासीं त मन जेको मथे में सूर माण्हू पवंदो आहे,
0: जी जी दादा,
2: त इहो माण्हू जेको मथो बधंदा आहिनि त इहो सही आहे या न? माना हिकिड़ो माण्हू मथे खे कपिड़ो के बधंदा आहिनि, इहो सही आहे या ग़लति आहे?
1: सर, इहो हिकिड़ो जेको आहे सो ज़ाहिर आहे कंहिंखे जेकॾहिं शिदत घणी थींदी आहे, ख़ासि करे मर्द त मथो कोन ॿधंदा आहिनि, मथो त वरी बि औरतूं ई ॿधंदियूं आहिनि, ऐं उहो उहे बि घर में ॿधंदियूं आहिनि, ऐं मथो ॿधणु हिकिड़ो हैबिट आहे, लेकिन मथे ॿधण सां को सूर सां को तालुक़ु न आहे, उन सां को सूर झको न थींदो आहे। वक़्ती तौर ते सिर्फ़ु हिकिड़े क़िस्म जी केरु माण्हू जीअं ज़ोर ॾियारे या जेको आहे सो इनहेलेशन कराए त उहा ई थींदी आहे, लेकिन हिन सां को मथे खे को ॿधण को इलाज न आहे। जी साईं,
3: वालेकुम सलाम, केरु था ॻाल्हायो था?
0: मिठी
1: सोडा उहो इस्तेमालु करे सघे थो, लौंग जो तेल इस्तेमालु करे सघे थो, या फिर रूबरू ॾेखारे वञनि त उहो वधीक बहितर।
0: पहुचे पियो असांजे स्टूडियो में मौजूदु सिंध जो मशहूरु मारूफ़ डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन साहब बि कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे।
3: वालेकुम अस्सलाम जी दादा, जी जी दादा,
0: केरु साहब पियो ॻाल्हायो था? जी जी, छा पुछंदा डॉक्टर साहब खां?
2: मां ॾाढियूं करायूं आहिनि।

खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राबते जे लाइ 0300-3385-569 03-00-33-8-5-69।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।

0: अहिड़ो कामयाब हुयो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
2: हा दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
1: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
0: ऑफिस जी मीरापुर FM 94 गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मीरापुर।
2: राबते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
3: 03013992836।
4: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94।

पाकिस्तान जे अमन गालियुनि लाइ पोजीशन जी वाखाण ते दोस्त मुल्कनि जा थोराईंदा आहिनि। 80 सालनि खां कश्मीर जो मसलो हल न पियो थिए। आलमी कानून ऐं माहिरनि जी पासदारी यकीनी बणाइणु घुरिजे।

0: سبيل الله هو الحق.
1: قال الله تعالى:
0: وأنه يحيي الموتى.
1: ذلك بأن الله على
0: كل شيء قدير،
1: وأنه يحيي الموتى
0: آتي،
1: وأنه على كل شيء قدير.
2: पाकिस्तान समेत समूरी दुनिया के वी लख का हज पांडे हज जो मुख्य रुकन वकूफ अरफा अदा कर वरतो। मस्जिद नबरामा मस्जिद नबी के इमाम अली अब्दुल रहमान अल हुसैफी हज जो खुतबो डींदे चयो त मुसलमान के मुसीबत में सफर जो दग न छड़न घुर्जे। सफर करण वारन लाए अला वरे अजरे असीम जो वायदो कियो आहे। जिन कौमन जुल्म कयो ऐं नाशुकरी कई इन्हनि खां नेमतूं खसियूं वयूं। ऐ ईमान वारो अल्लाह खां डिजो ऐं तकवा अख़्तियार करे वाइदे जी पासदारी करियो। तकवा अख़्तियार करणु ईमान वारनि जो शान आहे। कंहिंखे बि अल्लाह ताला सां शरीक न कयो ऐं रब खां सवाइ कंहिं बि ग़ैर जी इबादत न कयो। अल्लाह ताला मुसलमाननि जे हाल ते रहम फरमाए। लखे हाजी सगोरन मस्जिद नबरा में हज जो खुतबो ॿुधण खां पोइ बि पहिरीं ऐं टे पहिरीं जी नमाज़ गॾु अदा कई। हाजी सगोरा मज़लफा पहुचण शुरू थी विया, जिते समूरी राति खुलियल आसमान हेठि गुज़ारींदा। हाजी सगोरा सुभाणे शैतान खे पथरियूं हणण खां पोइ अहराम खोले छॾींदा। बाद में सुनत इब्राहिमी तहत जानवरनि जी क़ुर्बानी कंदा। पाबंदी बणियल टीटीपी ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट समेत कंहिं बि दहशतगर्द ग्रोह खे कंहिं बि सरज़मीन तां इलाक़ाई सलामती खे नुक़सान पहुचाइण जी इजाज़त न ॾिबी। पाकिस्तान ऐं चीन जो इतफ़ाक़। ॿिन्ही मुल्कनि जो अफ़गानिस्तान जे मामले ते वेझा लाॻापा जारी रखण ते बि इतफ़ाक़ करे वरितो। वज़ीर आज़म जे चीनी दौरे बाबति जारी थियल पधराई में सी पैक जी तरक़ी ऐं गवादर पोर्ट खे इलाक़ाई राब्ते वारो मर्कज़ बणाइण ते इतफ़ाक़ कयो वियो। दहशतगर्दी ख़िलाफ़ मिटे मयार जी मुख़ालफ़त। चीन ईरान अमरीका जंगबंदी लाइ पाकिस्तान जी कोशिशनि जी वाखाण कई। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चइनि ॾींहनि चयो चीन जो सरकारी दौरो मुकमल करे वापसि ॾे पहुची वियो।

0: अमरीका जा जंगबंदी बावजूद दखण ईरान में मुख्तलिफ हंधन से हमला। अमरीकी फौज पारा ईरान के ड्रोन लॉन्चिंग हंधन बारूदी सुरंगू विछाण वारियन ईरानी बेड़ियन के निशानों बनाने की दावा। अमरीकी सेंटकॉम जो चवण है त अमरीकी फौज जारी जंगबंदी दौरान सबर जो मुजाहरों करो दिफा की। अमरीकी परदेही वजीर मार्को रोबियो भारतीय शहर जयपुर में मीडिया से गालाइंदे कें न कें तरीके से हरमुस्त खुलण है। हाने भी ईरान से माहिदो मुमकिन है। अमरीकी सदर भी चाहे तो माहिदो थे। ईरानी पासदारन इंकलाब गार्ड्स पारा अमरीकी MQ-9 ड्रोन किराने की दावा। ईरानी मीडिया मुजिब ईरानी पासदारन गार्ड्स अमरीकी F-35 जंगी जहाज से फायरिंग भी कई। ईरानी फौज के तर्जुमान अबुल फजल शकारची है त जंगबंदी की वचकड़ी से रद्द अमल अग का शदीद ए ताकतवर होंद। ईरानी परदेही वजारत के तर्जुमान इस्माइल फकाई है त अमरीका हुर्मुज़गान के इलाके में जंगबंदी की वचकड़ी कई। ईरान पैं दिफा लाए कें भी कदम का पुख्ते न डो। ईरान अगराई कंदर अमरीका के सख्त चमाट वाए कढ़ी। अल्लाह अकबर के हथियार ईरानी कौम के कुवत ए ताकत अदा कई है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई जो हज के मौके से पैगाम। मुश्तबा खामनाई खिते जो कौमू ए मुल्क हाँ अमरीकी अदन लाए ढाल न बढ़ा। अमरीका के हाँ खिते में फाई वारन फौजी अदन के क्याम लाए महफूज पनागा भी न मिली। मुस्तबिल उम्मत इस्लामिया नई इस्लामी तहजीब जो है। इसराइल पैंजी उम्र के आखिरी मरहले के वेझो पहुंची चुको है। मुखालिफ सूर इतिहाद तहरीक तहफुज आइन पाकिस्तान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुसलमान मुल्क का इब्राहिमी मुआहदे में शामिल थे वाले मुतालबे के रद्द कर छो। अड़े मुतालबे से गणती जो इजहार पदराई में चाह है त अमन माहदे के मशहूर करण इसराइली एजेंडा जो वाजह सबूत है। हुकूमत इन तजवीज़ मुतालबे से बिना देर ए चिट्टो मौकिफ अख्तियार कर फलस्तीनियन के 80,000 का शहीद के खून जो कर्ज अमानत है। सिंध में पानी की सख्त खोट बावजूद पंजाब तकरारी लिंक कैनाल जरिए पानी की खणत बंद न कई। पीपल्स पार्टी जो सख्त एहतजाज। पंजाब जो अमल सिंध के बंजर बनाने की कोशिश है पानी ठाह की बदकड़ी करार। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो है इरसा तरीफ की सीजन में रुगो सिंध लाए पानी के 27% घटताई कई। पंजाब लाए पानी की घटताई 0% कई वही। 67% जरिए पैदावार कदड़ सिंध सूबे के पानी जो जायज हिस्सो छो न पो दिनों वे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़नि जड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569, 0300-3385-69।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाईरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320-18-00-003
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बे डरंदी
3: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003

0: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
1: पाकिस्तान समेत समूरी दुनिया के 20 लख का वधिक हज पांधेड़न हज जो मुख्य रूपन वकूफ अरफा अदा करे वरतो। मस्जिद निमरा मां मस्जिद नबी के इमाम अली अब्दुल रहमान अल कुसैफी हज जो खुतबो डींदे चयो त मुसलमानन के मुसीबत में सबर जो दग न छड़न घुर्जे। सबर करण वारन लाइ अलाह वॾे अजरे अज़ीम जो वाइदो कयो आहे। जिन क़ौमन ज़ुल्म कयो ऐं नाशुक्री कई उन्हनि खां नेमतूं खसियूं वयूं। ए ईमान वारो अलाह खां डिजो ऐं तकवा अख़्तियार करे वाइदे जी पासदारी करियो। तकवा अख़्तियार करणु ईमान वारनि जो शान आहे। कंहिंखे बि अलाह ताला सां शरीक न कयो ऐं रब खां सवाइ कंहिं बि गैर जी इबादत न कयो। अलाह ताला मुसलमाननि जी हालति रहम फरमाए। लखे हाजी सगोरन मस्जिद नमरा में हज जो खुतबो ॿुधण खां पोइ विपहरी ऐं टिपहरीअ जी निमाज़ गॾु अदा कई। हाजी सगोरा मज़दलफ़ा पहुचण शुरू थी विया, जिते समूरी राति खुलियल आसमान हेठि गुज़ारींदा। हाजी सगोरा सुभाणे शैतान खे पतियूं हणण खां पोइ इहराम खोले छॾींदा। बाद में सुनत इब्राहिम हिदायत जानवर जी क़ुर्बानी कंदा। पाबंदी बढ़ियल TTP ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट समेत कंहिं बि दहशतगर्द ग्रोह खे कंहिं बि सरज़मीन तां इलाकाई सलामती खे नुक़सान पहुचाइण जी इजाज़त न ॾिनी। पाकिस्तान ऐं चीन जो इतफ़ाक़ ॿिन्ही मुल्कनि जो अफ़गानिस्तान में मामले ते वेझा लाॻापा जारी रखण ते बि इतफ़ाक़ करे वरितो। वज़ीर आज़म जी चीनी दौरे बाबति जारी थियल पधराई में CPEC जी तरक़ी ऐं गवादर पोर्ट जे इलाक़ाई राब्ते वारो मर्कज़ बणाइण ते इतफ़ाक़ कयो वियो। दहशतगर्दी ख़िलाफ़ किथे मयार जी मुख़ालफ़त चीन ईरान अमरीका जंगबंदी लाइ पाकिस्तान जी कोशिशनि जी वखाण कई। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ 3 ॾींहनि जो चीन जो सरकारी दौरो मुकमल करे वापसि ॾेई पहुची वियो। विच ओभर में चिकटाइण वारी सूरतहाल आलमी सतह ते मुआशी बुहरान पैदा कयो आहे। पाकिस्तान चिकटाइण कटाइण लाइ नेकनीयती सां कोशिशूं कयूं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार जो गॾियल क़ौमनि जी सलामती काउंसिल जे इजलास में ख़िताब। इसहाक डार चयो त चिकटाइण कटाइण लाइ पाकिस्तान ॻाल्हियुनि लाइ ज़ोर भरियो। पाकिस्तान जे अमन ॻाल्हियुनि लाइ कोशिशनि जी वखाण ते दोस्त मुल्कनि जा थोरायता आहियूं। 80 सालनि खां कश्मीर जो मसलो हल न पियो थिए। आलमी कानून ऐं माहिदनि जी पासदारी यकीनी बणाइण घुर्जे। पाकिस्तान सिंतास माहिदे जी तरफ़ी मुअतली तस्लीम न थो करे। पाणीअ जो हथियार तो इस्तेमाल कंहिं बि सूरत में क़बूलण जो न आहे। अमरीका जा जंगबंदी बावजूद ॾखण ईरान में मुख़्तलिफ़ हंधनि ते हमला। अमरीकी फ़ौज पारां ईरान जे ड्रोन लॉन्चिंग हंधनि ऐं बारूदी सुरंगू विछाइण वारियुनि ईरानी ॿेड़ियुनि खे निशानो बणाइण जी दावा। अमरीकी सेंटकॉम जो चवण आहे त अमरीकी फ़ौज जारी जंगबंदी दौरान सबर जो मुज़ाहिरो कंदे पंहिंजो दिफ़ा कंदी। अमरीकी परॾेही वज़ीर मार्को रोबियो भारतीय शहर जे पूर में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो कंहिं तरीक़े सां हुरमुस न खुलणो आहे। हाणे बि ईरान सां माहिदो मुमकिन आहे। अमरीकी सदर बि चाहे थो त माहिदो थिए। ईरानी पासदारनि इंकलाब गार्ड्स पारां अमरीकी MQ-9 ड्रोन किराइण जी दावा। ईरानी मीडिया मूजिबि ईरानी पासदारनि गार्ड्स अमरीकी F-35 जंगी जहाज ते फायरिंग बि कई। ईरानी फ़ौज जे तर्जुमान अबुल फज़ल शिकारची चयो आहे त जंगबंदी जी बजगड़ी ते रद अमल अॻु खां वधीक शदीद ऐं ताक़तवर हूंदो। ईरानी परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त अमरीका हुरमुज़गान जे इलाइक़े में जंगबंदी जी बजगड़ी कई। ईरान पंहिंजे दिफ़ा लाइ कंहिं बि क़दम खां पुठिते न हटंदो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग ते मुशावरत लाइ सुभाणे सुबुह जो कैंप डेविड में काबीना जो इजलास सॾाए वरितो। गैर मामूली इजलास में काबीना जे समूरनि मेंबरनि खे शिरकत जी हिदायत। अमरीका मीडिया मूजिबि इजलास में अमरीका जे अॻूणे डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड बि ख़ुसूसी तौर शिरकत कंदी। ईरान अगराई कंदड़ अमरीका खे सख़्त चमाट वाए कढी। अलाह अकबर जे हथियार ईरानी क़ौम खे क़ुव्वत ऐं ताक़त अदा कई आहे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई जो हज के मौके से पैगाम। मुश्तबा खामनाई खिते जो कौमू ए मुल्क हाँ अमरीकी अड्डन लाए ढाल न बढ़ा। अमरीका के हाँ खिते में भाईवार फौजी अड्डन के क्याम लाए महफूज पनाहगाह भी न मिली। मुस्तकबिल उम्मत इस्लामिया नई इस्लामी तहजीब जो है। इसराइल पैंजी उम्र के आखिरी मरहले के वेझो पहुंची चुको है। मुखालिफ धुर इतिहाद तहरीक तहफुज़ आइन पाकिस्तान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुसलमान मुल्क का इब्राहिमी माहदे में शामिल थे मुतालबे के रद्द कर माहदे के मशहूर कर इसराइली एजेंट सबूत है। तजवीज या मुतालबे के बिना देर है चिट्टो मौके अख्तियार कर फलस्तीनियन के 80,000 का शहीदन के खून जो कर जमानत है। यो माहदो इसराइली गुंडागर्दी के कानूनी तहफ़ देने की कोशिश है। सिंध में पानी की सख्त कोट बावजूद पंजाब तकरारी लिंकेनास जरिए पानी की खणत बंद न कई। पीपल्स पार्टी जो सख्त एहतजाज पंजाब जो अमल सिंध के बंजर बनाने की कोशिश है। पानी ठाव की बजकड़ी करार पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़े है इसा खरीफ के सीजन में रुगो सिंध लाए पानी की 27% घटताई कई। पंजाब लाए पानी की घटताई 0% कई वही 67% जरई पैदावार कदर सिंध सूबे के पानी जो जायज हिस्सो छो न पो दिनों वे पानी के हिस्से में कटौती कर सिंध जो माशी कतलाम पो पे वे यो असूली जवाज नो ठे तो सिंध के फसल लाए पानी दियण बदर डेमन में जखीरो वे इस हमेशा पानी के 1991 माहदे से अमल दरामद कर में नाकाम साबित की है। वजी अजम सिंध जो आवाज बुधे इस नाकामी जो नोटिस वे सिंध के हिस्से जो पानी दिये। पर वजीर सैयद फराद अली शाह डहरकी पौतो रैडकी दरबार पहुंची साई साध राम के ध्यान से वारिसन से ताजियत कई। वडे वजीर है साई साध राम के विछोड़े से वो खाल पैदा थो है। उम्मीद तो क्या त साई साध राम जो मोहब्बत ए अमन जो पैगाम दिनों हो संदस पोयर ए पोए लगे पैगाम से हल्दा रहा।

0: प्लीज कोशिश करे पे होम मिनिस्टर पाण उनखे ॾिसे पियो थो त जीअं जल्दी बाज़ियाब कराए सघूं।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा

0: सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वग़ैरह बाज़ार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
1: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
0: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 ऐं 02424601100।
2: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।

0: मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नर्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836।

0: खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राबते जे लाइ 0300-3589
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तियाब आई
1: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003
4: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

पथरी मसाने की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301 91 896

0: तव्हांजी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हांजी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। जिंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते। खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ़ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
2: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सदर रजब तैयब अर्दगान विच में टेलीफोनिक राबतो बिन्हीं अखबारों के वापार ए सीरपकारी के शोबन खिते में अमन के क्याम लाए सरकार जारी रखने इतफाक। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दगान बलूचिस्तान में ट्रेन धमाके से दुख जो इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो तो पाकिस्तान दहशतगर्दी खिलाफ जिदोजहद जारी रखो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्क क़यादत अवाम के ईद उल अज़हा की मुबारकबाद भी पेश की। विच ओवर में चिपटाण वाली सूरत हाल आलमी सतह से मुआशी बहरान पैदा किया है। पाकिस्तान चिपटाण कटाने लाए नेक नियती से कोशिशों क्यों। नायब वजीर आजम इसहाक डार जो गडियल कौमन की सलामती काउंसिल के इजलास के खिताब। इसहाक डार चौथा चिपटाण कटाने लाए पाकिस्तान गादियन लाए जोर भर। पाकिस्तान के अमन गादियन लाए कोशिश जीवा खान के दोस्त मुल्क फोरायता हूं। 80 साल का कश्मीर जो मसलो हल न पो थे। आलमी कानून माहिदन की पासदारी यकीनी बनाने घुर्जे। पाकिस्तान सिंध ताश माहिदे की एक तरफी मुअतली तस्लीम नो करे। पानी जो हथियार तौर इस्तेमाल कें भी सूरत में कबूलन जरूरी ना है।

0: الذين هدوا الحق.
1: قال الله تعالى
0: وأنه يحيي الموتى
1: ذلك بأن الله على كل شيء قدير
0: وأنه يحيي الموتى
1: وأنه على كل شيء قدير.
2: पाकिस्तान समेत समूरी दुनिया के 20 लख का वधिक हज पांधेड़न हज जो मुख रुकन वकूफ़े अरफा अदा करे वरतो। मस्जिद नबरामा मस्जिद नबी के इमाम अली अब्दुल रहमान अल हुसैफी हज जो खुतबो डींदे तो मुसलमान के मुसीबत में सबर जो दंग न चढ़न घुर्जे। सबर करण वारन लाए अल्लाह वडे अजरे अजीम जो वायदो कियो आहे। जिन कौमन जुल्म कयो ऐं नाशुक्री कई उन्हनि खां नेमतूं खसी वयूं। ईमान वारो अल्लाह खां डिजो ऐं तकवा अख़्तियार करे वाइदे जी पासदारी करियो। तकवा अख़्तियार करण ईमान वारनि जो शान आहे। कंहिंखे बि अल्लाह ताला सां शरीक न कयो ऐं रब खां सवाइ कंहिं बि गैर जी इबादत न कयो। अल्लाह ताला मुसलमाननि जी हालत ते रहम फरमाए। लखे हाजी सगोरन मस्जिद निमरा में हज जो खुतबो ॿुधण खां पोइ विपहरी ऐं टिपहरी जी नमाज़ अदा कई। हाजी सगोरा मसलफ़ा पहुचण शुरू थी विया जिते समूरी राति खुलियल आसमान हेठि गुज़ारींदा। हाजी सगोरा सुभाणे शैतान खे पथरियूं हणण खां पोइ अहराम खोले छॾींदा। बाद में सुनत इब्राहिमी तहत जानवरनि जी कुर्बानी कंदा।